इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: छत पक्षियां रंगा दी, धूप बरसाती, सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया। दोनों को ही चार

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ और जेसियस, आप एंजॉय कर रहे हो मजेदार शो। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम दोपहर के 2 बजे तक मजेदार शो व्हाट्सएप आप भी हिस्सा बने, साथ ही फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल के ऑफिशियल हैंडल्स को। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर सर्च करें रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन, और फॉलो शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ याद रखिए कमेंट्स में प्यार देना जरूरी है। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मैं हूँ जॉक्स्यूस रिएक्ट।

0: Yeah, that's the religion of your hardest frequency, but my own jokes, you stop enjoying the Ramazdar show. What's up? और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन अपने भी शो का हिस्सा बनना है 8899 0049 0049 नंबर रेडियो चैनल 90.4 एफएम. आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. अब यह है कि आप सोचेंगे कॉल व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज नहीं किया तो क्या करेंगे, डीएम करेंगे. इंस्टाग्राम पर मिल लूंगा जॉक जूस के नाम से, जॉक जूस आप सर्च कर सकते हैं, JOCKEUS जॉक जूस के नाम से, या आप सर्च कर सकते हैं जूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो. इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके आप शो में हिस्सा ले सकते हैं. याद रखिए डीएम जो है शो के टाइम में ही करना है, नहीं तो बाद में आप डीएम करते फिर बोलते हैं यू नो छोनो मैसेज शो में करो, सर टाइम पे करो यार, मैसेज शामिल हो जाएगी. फिलहाल वार्तालाप जारी है अभी के लिए. जी हाँ, अभी के लिए ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर.
1: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट.
0: यार रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो, व्हाट्सएप शो में आज का वेदर अपडेट. आज का वेदर होने वाला है थोड़ा सा ग्लूमी, थोड़ा सा सैड, क्योंकि बादल हो रहे हैं, थोड़े से मैड बादलों में हो रही है हलचल और बारिश की खबर मिल रही है पल पल. जी है, जमुरी जैकेट पहनकर बाहर जाएगा, डमरू बजाएगा, गाड़ी में भी छतरी ले जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ वहां जाना पड़े मैं चुन छतरी सुत रू छन तिमाना बिल्या क्या ख्याल चुताउन छतरी सुतना. एंड इफ यू आर राइडिंग और टू व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी मस्त रेन कवरन वेन कवरन सुतना, इट कैन बी एन ईज फॉर यू. मौसम छाज बढ़न नफीज, दोपहर होते होते बारिश गिरने की आशंका. वही अभी की बात करें तो 27 डिग्री आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाला है और यू इंडेक्स मॉडरेट पर, ह्यूमिडिटी 52%, विजिबिलिटी 6 किलोमीटर्स. और वही अगर हम विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड सौंधी सौंधी हवा है आपके साथ. वैसे साथ तो हमारा भी है, सुबह 9:30 से लेकर रात के 11 बजे तक हम जो है आपको एंटरटेन करते रहते हैं. वही लाइव सेशन जो होते हैं 9:30 से शाम के 7 बजे तक होते हैं. हाय हाय, पांच

बजकर 27 मिनट पर हुआ आज का सनराइज और 7 बजकर 30 मिनट पर होगा आज का सनसेट। सो अपना दिन जो है अकॉर्डिंगली प्लान करें, एंड इफ यू आर ड्राइविंग माय जान, खा के मोहब्बत का पान, रेडियो चुनार का वॉल्यूम बढ़ाओ, सबको सुनाओ, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़का। मैं हूं जॉक्स।

0: जूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे।
2: व्हाट्सएप पे
3: रिजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर। जी हाँ, जब वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है वायरल ऑन व्हाट्सएप, जहां पर हम वायरल अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। वायरल ऑन व्हाट्सएप में आइए बात करते हैं एस्टन हॉल की। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते एस्टन हॉल कौन है, तो आपको बता दूं कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स जिन्हें एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह जाना जाता है, माना जाता है, और जिनके करोड़ों लोग दीवाने हैं। अमेरिका से ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर आए इंडिया में अपने एक क्रिएटर से मिलने के लिए। जी हाँ, एक इंडियन क्रिएटर जिनका नाम योगेंद्र कुशवाहा है, जो कि मजे के लिए एस्टन हॉल का जो लाइफस्टाइल है, रूटीन्स हैं, उन्हें फॉलो करने लगे और लोगों ने इन्हें इंडियन एस्टन हॉल बुलाना शुरू कर दिया। और सक्सेस उनके दरवाजे पर आती गई, लाखों लोग उनका कंटेंट जो है एंजॉय करने लगे और वो भी रूटीन फॉलो करने लगे एस्टन हॉल की तरह। एंड फाइनली एस्टन हॉल ने एक चैलेंज दिया था कि अगर एक वीडियो पर कुछ लाख व्यूज आए तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा, वही अगर इस पर इतने ज़्यादा व्यूज आए कि बेतहाशा प्यार मिला तो तुम्हें एक गाड़ी भी गिफ्ट करूँगा। लोगों ने आप देखना था पतले से छोरे का कर दिया सपोर्ट और एस्टन हॉल को आना ही पड़ा। और फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM, मैं हूँ चॉक ज्यूस। आप बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को, दिल गाते रहें।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, एज अ लीडर इट्स इम्पोर्टेंट टू नॉट जस्ट सी योर सक्सेस बट फोकस ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार, मैं हूं जो अक्सर सिरे धड़का

0: मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
2: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

dudes. और इस फ्रीक्वेंसी और दिल के धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो सुबह सब शो में मैं हूं आपका साथी जॉक्सिस। और वक्त हो चला है जो लोग व्हाट्सएप शो सुनते हैं हर रोज सुनते हैं उन्हें पता है कि वक्त बहुत ही टॉपिक बहुत ना हो सकता है बट उससे पहले कुछ दोस्तों के नाम शायस्ता हमारे साथ जुड़ी है लिखती है शायस्ता सर अपने जो गाना चलाओ वो भी शायस्ता का है मैं भी शायस्ता हूँ और मैं कहना चाहती हूँ मुझे व्हाट्सएप शो पसंद है थैंक यू सो मच शायस्ता दो बार शायस्ता शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। और मोहिदीन हमारे साथ जुड़े हैं इनके साथ जुमाना है इनकी बेटी और नूर है दो दो बेटियां वाह क्या किस्मत पाई है दोस गॉड ब्लेस यू मतलब रहमती रहमत सो एंड लिखते हैं दोनों बेटियों के साथ आपका शो सुनता हूँ पूरी फैमिली सुनती है मज़ा आता है आप जो ज्ञान वगैरह बांटते हैं इसके बारे में तो इंटरनेट पर कम ही पता चलता है आप कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं भैया बोच चालाक मतलब ये کھاون ترے نا کن آبس مز پہ کھجن سہ آبچ لیول سہ چالاک کوا اس میس ٹیوشن رٹا فی الحال بدلنے والی بات یہ ہے کہ اس آل اوور دا انٹرنیٹ اب سیگمنٹ ہے تو نظر رکھنی پڑتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ عادت سی ہو جاتی ہیں پھر اور پتہ چل ہی جاتا ہے سبسکرپشنز وغیرہ یہ وہ تو نیوز آ ہی جاتی ہے تھینک یو سو مچ عارف محی الدین ہم سے جڑنے کے لیے اور اس فریکوینسی پر آپ اور میں مل کر انجوائے کر رہے ہیں ہاٹسٹ فریکوینسی کا مزدار شو واٹس اپ और व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं सानी सानी क्योंकि बाहर है गर्म पानी पानी और दिल पर जानी जानी गर्मी का मौसम आने वाला है तो आज हम बात करेंगे गर्मी की मतलब क्या गाना है मेरे तो कूले हिर रहे कंधे हिर रहे हाथ थिरक रहे इससे पहले कि नाचना शुरू कर दूं और माइक को टक्कर लग जाए आपको बता दूं कि समर के बारे में आपके क्या है प्लान कहाँ आने का कहाँ जाने का हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। समर में कैसे आप गर्मी से बच सकते हैं और किस तरह से हीट को बीट कर सकते हैं समय अहेड आज का टॉपिक अब भी अपनी बात हम तक पहुंचाए 8899 0049 0049 हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार सुनते रहो।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।
1: Guys, turn over, please.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ।
2: दोस्तों रेडियो 90.4 FM द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जी हाँ दिल की बात साहिल के साथ। और साथ ही साथ आपको बता दे इट्स ऑनली ऑन रेडियो 90.4 FM
1: धड़कन धड़कन।
2: मैं हूं जॉक्सियस और आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश आई फील गुड अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, याद रखिए शो का हिस्सा बनने के लिए 888-9904 इज द नंबर।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
0: ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ.

Jeremy. Char beats with Harshadeva only on Radio Channel 90.4 FM.

बीस ऑन रिपीट शो चुनाव बीच आप एंजॉय कर रहे होंगे ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही हैं। देखिए शुरुआत ही हो चुकी है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे ही मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और अभी 12, जी हाँ 12 से थोड़ा हम आगे जा रहे हैं और बहुत कुछ है बाकी, यानी कि बात बाकी, रात तो बाकी नहीं है लेकिन जो भी है वो हो जाएगा। ये की बातें होंगी, बेशुमार होंगी एंड स्पेशली विल बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे की बात करें, बहुत सारे से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है, स्लो मोमेंट है बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी केयरफुल क्योंकि पता है कि रास्ते में कई कई जगह पे मेंटेनेंस चल रही है, सो गाइडलाइंस के मुताबिक ही हम अपना प्लान बनाए। शो चुनाव बीट्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ अभी और ज़रूरी है कि हमें पता हो सीट बेल्ट लगा के ड्राइविंग रेसिपीज को फॉलो करके हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है, सो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Çınar 90.4 FM. 4 FM.

बीस और रुपीज जो चुनाव बीस आप एंजॉय कर रहे थे, सारी बातें हो रही है एंड बातें तो हमारी होती रहती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इर्द गिर्द देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता है कि सच में हमारे एक वर्ड की वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से जो है सामने वाला पर्सन या आपके साइड में कोई बैठा है वो कितना अनकम्फर्टेबल हो जाता है। क्योंकि जब मैं आज ऑफिस आ रही थी तो गाड़ी में लोग इतनी अजीब बातें करते हैं, इतना वो भूल जाते हैं कि हम पब्लिक में खड़े हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं और हमें पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन और कैसे दूसरों के सामने बात करना, और सामने वाला पर्सन कितना अनकंफर्टेबल फील करता है जब आप बिल्कुल वो कहते हैं ना बैड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या फिर आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिससे सामने वाला पर्सन सोचता है कि नहीं इस गाड़ी में चढ़ने का मतलब ही नहीं है भाई। सो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें एंड ध्यान रखा करें कि हमारे जो लोग हैं कहीं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे। सो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। सिक्स सेंस इज़ नॉट ओनली कि हम जब इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखें, इट्स मोर लाइक कि हमने अपने इर्द गिर्द लोगों की मेंटल हेल्थ का, उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। यानी कि जैसे वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं पब्लिक स्पेस में, हमने भी उन्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, शो कैसा बनना चाहते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, 8999049044 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो कैसा बन जाएगा।

छात्रा डिंपल दीक्षित उर्टी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

अक्सर यही होता है कि जब लाइफ में कुछ लोग हमसे छूट जाते हैं और हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी है और बस याद आ रही है, बट एक्चुअली हमें ये भी होता है कि काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी होती है हमारे पास्ट लाइफ के रिलेटेड. इट्स नॉट ऑलवेज कि दुख ही हो, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई होती है. और वही है कि अब आगे कारवां चलता है और सिलसिले बनते रहते हैं.

वही चीज़ें हैं कि हम दिल से जब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो और ट्राई करते हैं कि उस ज़िंदगी में हर वो चीज़ मुझे मिले जिसकी शायद से जो पास में चीज़ें हुई है वो सही नहीं हुई और आगे जाकर चीज़ें बहुत ही बेहतर हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है. वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन दैट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ अहेड, यानी कि आगे ज़िंदगी में हम क्या सोचते हैं या फिर क्या हुआ होता है और कैसे हमारी ज़िंदगी बस चलती जाती है और समझ नहीं आता है हमें कि हम कितने छोटी छोटी कीमती मोमेंट्स को कभी कभार मिस कर देते. आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है. 8999044 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो कैसा बन जाए.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

ये दूर गए जाने की ज़रूरत है, ये तो मेरा दिल कह रहा है, दिमाग तो ये सिग्नल दे रहा है कि आपने जाना है असरा को चढ़ना है, क्योंकि शो हंगामा की जवारी है। 90.4 रेडियो चुनार पर आप सभी इंजॉय कर रहे थे शो चुनार भी, शो म्यूजिक ऑन डिमांड अभी मैं जा रही हूँ। आप अपने ख्याल रखिए और हमारी मुलाकात बराबर कल होगी 12 बजे। आप बस इंजॉय कीजिएगा इस टाइम को और जो भी बात है एक्स्ट्रा के साथ कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुंदर रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: होगी या होगी रुबाई, वो तो बात करके पता चलेगा ना। शो शुरू हो चुका है हंगामा और मैं हूँ आरजे अस्रा। हंगामा में ड्रामा, इन्फॉर्मेशन और क्या बजिंग है, उसके अलावा लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं होता। और एक और चीज होती है, हमारी एक परंपरा है कि आते आते कुछ ना कुछ क्रेजी प्ले होता है।
1: तो काको कानी बलिए, आले को कानी बलिए, आ चामक सी को चलिए।
0: Exactly, that's what I said, कि आज या हंगामा में चलिए, क्योंकि चनार बीच खत्म हो चुका है और अभी अभी शो शुरू हुआ है और दो से चार लेकर बराबर दो से चार ही बिल्कुल शो हंगामा होता है और बहुत सारी बातें होती हैं और स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, और उसके अलावा हमारा हमेशा एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है और वो भी आप तक पहुंचाएंगे पर कुछ ही अपडेट्स के बाद और ट्रैक्स के बाद भी। फिलहाल एंजॉय कीजिए मेक्सिको को का ट्रैक बाय करण औजला। एंड इस ट्रैक की ना एक कहानी है, अब देखिए आते आते ही अगर आप मैंने आपको कहानी बता दी तो एवरीबडी स्टेज हुक राइट। सो इस ट्रैक की ये कहानी है कि जब भी लोग कहते हैं वो वी रैप, या अगर टिकटॉक के ज़माने की बात करें तो पंजाबी जो रैप्स हैं वो काफ़ी कम फेमस होते हैं एज सच इन द यूथ। अगर हम बोहेमिया की बात करें, दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ पंजाबी रैप म्यूज़िक। बट अगर करण औजला की बात करें, दिस वॉज अ ट्रैक एंड एग्जैक्टली दिस वॉज द रैप That made him famous. Bilkul, hurry up, baby. 889-994-904 is the number, and you should hurry up too and call us. Tell us what you are thinking about the day and anything that you want to share. Main hu Asra, show hai Hangama mein, bas yun kahi aur yun wapas aaye.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन. अभी अभी शो शुरू हुआ है कुछ देर पहले और हम शो शुरू करने के बाद बात करते हैं सबसे पहले कि क्या चल रहा है दुनिया में. आखिरकार मतलब सोशल मीडिया एक बहुत ही अमेजिंग जगह है एंड ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे कुछ भी कभी भी ट्रेंड कर सकता है. और स्पेशली बात करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, ये चार प्लेटफॉर्म्स हमेशा ही कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है. एंड देयर इज़ वन मोर प्लेटफॉर्म दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट यंगस्टर्स एंड दैट इज़ रेडिट. आजकल रेडिट पे क्या खबर है? खबर ये है, ऐसी है कि कैसे बहुत सारे लोग अभी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं एंड दैट इज नॉट इवन पॉलिटिकल, दैट इज बस सटायर. कॉकरोच जनता पार्टी. और कॉकरोच जनता पार्टी किन लोगों की है? अपेरेंटली ये कहा जा रहा है ये जेंजी पार्टी है, जहाँ पे एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच के साथ कंपेयर किया था. अब जो लोग शायद ऑफेंड होना चाहते थे या ऑफेंड हो सकते थे वो ऑफेंड नहीं हुए, बल्कि ये लेजी जेनरेशन ने एक ऐसी पार्टी बनाई है जिसमें लोग लाइक ज्वाइन कर सकते हैं एंड कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये अभी वायरल है.
1: इमोशनल अत्याचार.
0: आई वुड से ये सिर्फ इमोशनल अत्याचार नहीं बल्कि इमोशनल डैमेज है. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अभी आज की ये भी अपडेट है कि इस पार्टी के जो लोग हैं कॉकरोच कॉस्ट्यूम में यमुना नदी साफ करने निकले हैं. एंड काम तो अच्छा है पर सटायरिकली दे आर डूइंग इट एंड दैट्स फन.
1: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल.
0: तो आप बताइए क्या आप ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहेंगे? अजी मेरी बात करें तो मैं तो करना चाहूंगी, बट उसके लिए अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? 8899904904 इज नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और बताइए अपने दिल का हाल. मैं हूँ असरा, मैं और बस यूं गई और यू वापस आए.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM और अभी वक्त है रेलवे अपडेट्स का. देखिए प्रेम नगर तो आपको जाना नहीं होगा, पर जहां भी आपको जाना होगा उसकी अपडेट यहीं पे है, क्योंकि देखिए NH44 की जो अपडेट है वो दीबा बता देती हैं और रेलवे की हम बताते हैं. और रेलवे की अपडेट यही है कि आज अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, इट इज़ बेटर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले ही पहुँचें, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन थोड़ी डिले या नॉट एज पर द शेड्यूल. और शेड्यूल कैसे है वो समर टाइम टेबल पर आपको मिल जाएगा एंड यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल Anywhere, like on internet, but specifically अगर बात करें तो जो official app है रेल वन, वहाँ से आपको हर कोई update मिल सकती है. Live train status कहाँ है, train between stations. And रही बात जो delay की मैं कह रही हूँ, क्योंकि there is a ring road formation infrastructure build हो रहा है वहाँ पर, ring road construction है between Mazama and Badgam station. So थोड़ा बहुत trains delay हो सकती हैं because this is unidirectional, only one way track है. So be patient, be a good citizen. मैं मोस्ट ऑफ शो हंगामा में बस क्यों कही और यूं वापस आई. और आप भी बताइए अपनी कुछ ट्रेन टेल्स, क्योंकि ट्रेन में जब सफर करते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, या कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं. 8899049904 नंबर, जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा. मैं मोस्ट ऑफ शो हंगामा.

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगढ़ लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam, Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय मैं हूँ आस्था और आप सुन रहे हैं शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए अभी वक्त हो जाए चला है कि मैं हम बात करेंगे आज का टॉपिक क्या, और आज का टॉपिक ऐसा है कि आप चिल नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल नहीं हूँ मैं चिल, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ जरूरी है कि हम बात करें कि जो हर किसी चीज के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और क्या है इसका इफेक्ट मिडिल क्लास पे होता है, और कैसे हम इससे काउंटर कर सकते हैं अगर हमारे पास इनकम है, और इनकम को सही से जो जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है बट उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, तो उनके पास एट द एंड ऑफ द डे कोई पैसा बचता ही नहीं है, ना ही इन्वेस्ट होता है। तो आज हम जानेंगे सब चीजों के बारे में, द फाइनेंशियल ग्रिड ऑल ओवर द प्लेस। मैं हूं आस्था, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: Just to... करो हंगामा आजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं शू हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आज का टॉपिक क्या है, एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपका क्या विचार है रिलेटेड टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे इस जो वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, वह आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेटेड टू दीज थिंग्स पे। हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन।
1: बेबी मेरा माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: जरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और आज हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की और कुछ ही ट्रैक्स के बाद शुरू हो रहा है एक नया सेगमेंट दैट इज गेम ऑन। गेम ऑन यानी कि स्पोर्ट्स का सेगमेंट, तो बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
3: रेडियो चनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी

0: सुनाए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

सबको तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, टारा जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: साथी
1: बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।